मुझ मरियाम बाब कर गए हम दूसरी से मर गए मरियाम बाब कर गए मुझुर कंटोम फाल अगली जे Mariam,